जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से दुरुस्ती के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। दिलों के घर पर खुशियां है शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा बैठा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0382656560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0382266611। रेडियो SBS का वेबसाइट radiosbs.nl। आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है और यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन के आवास में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारे सभी सुनने वालों सभी भक्त।

केसरिया पीस की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिय हरन के आवास में ये सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पीस की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन एक बार फिर से बस पेश किया जा रहा है और आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। तो भजन यात्रा प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। चले अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, एक सुंदर सा भजन होगा अनूप जलोटा जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है। राम से बड़ा राम का नाम, सुंदर भजन जो काफी दिनों के बाद आप सभी सुनने वालों की सेवा में

सुंदर भजन अनूप जलोटा जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए आसरा मीठे सुंदर भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चले एक भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आपको हम ले चलते हैं पंडित जय शंकर जी की ओर और पेश किया जा रहा है ये सुंदर भजन।

रेडियो SBS की जरिए सुंदर भजन व प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

अभी सुन वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वेबसाइट रेडियो SBS.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं हरिहरन की आवाज में ये सुंदर भजन जो पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए सुंदर सा भजन हरि हरन की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में श्री हनुमान चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी हरिओम शरण जी की आवाज में।

0: भगवान की जय।
1: हरिओम, शरण जी की आवाज में ये सुंदर और सुंदर श्री हनुमान चालीसा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में बजरंग बाण की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

बजरंग बांग बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले है, काम करने वाले है, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया कोने कोने में रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार नीरज श्रीधर एंड सुनिधि चौहान के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। कुमार सानू और अनुराधा पोटवल प्रोग्राम में अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए कुमार सानू जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। अतीफ असलम की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो एसबीएस के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना अतीफ असलम की आवाज में आपने सुना और बेहद पसंद किया है। विनोद राठौर एंड साधना सरगम प्रोग्राम में

अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में गाना सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

बजकर प्रोग्राम में 5 मिनट व्यतीत हो चुका है। सुनवालू रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनवालू की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज मंगलवार का दिन है, 2 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनवालू को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनवालू को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो। यहाँ से पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनवालू की सेवा में पेश किया जाएगा तकरीबन 11 बजे तक। हर सुबह 9 बजे से लेकर के तकरीबन 11 बजे तक पुरानी नख़मे आप सभी सुनवालू की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम को बहुत से सुनवालू बस सुनते हैं, हॉलैंड देश के अंदर, हॉलैंड देश के बाहर, देश विदेश में हजारों हजारों सुनवालू बस इस प्रोग्राम को इंतजार कर रहे हैं। और हमेशा सुनवालू इस प्रोग्राम को गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बस सुनते हैं। जहां पर नौकरी भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां पर भी सुनवालू अपना मोबाइल फोन के जरिए DAB प्लस रेडियो के जरिए हमारा प्रोग्राम बस सुनते हैं। और वो भी गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो चले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है। और वो भी शुभ सुबह शुभ दिन के साथ, अनहेल खुरमोर्ख गुड मॉर्निंग के साथ। चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनवालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। एक हसीना दो दीवाने फिल्म का नाम। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले। मुकेश एंड लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। वेलकम आप सभी सुनवालों को, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं।

गाना बस पेश की गई एक हसीना दो दीवाने फिल्म का नाम दो कदम तुम भी चलो। रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम एक दूजे के लिए। गाना का बोल है हम बने तुम बने बने हैं बस एक दूजे के लिए।

गीत मंगेशकर और एस पी बालासुब्रमण्यम की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुन वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने बस बने हैं एक दूजे के लिए। रेडियो एस बी एस का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहडुत्रे हॉलैंड से। ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में सालों से बस पेश किया जा रहा है। किशोर कुमार और अब की बार हम आपको ले चलेंगे फिल्म जमीर की ओर।

सिंधवालू की सेवा में बस में इसकी गए हैं। चलिए अपनी बार आशा जी की ओर हम आपको ले चलते हैं, आशा भोसले की आवाज में ये गाना और फिल्म का नाम है जहरीला इंसान।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए, फिल्म का नाम जहरीला इंसान। आशा जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में, चलिए मोहम्मद रफी एंड लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। मोहम्मद रफी और

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था सबक, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। एक बार फिर से मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलेंगे। अगली बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार के आवाज में गाना भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में महेंद्र कपूर एंड लता मंगेशकर की ओर हम आपको ले चलते हैं और फिल्म का नाम हो

मैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था रूप देरा मस्ताना। चलिए आज की प्रोग्राम में मुकेश और लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

और चंद्रानी मुखर्जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आश्रोबित है। गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं फिल्म दारिंदा की ओर। यशुदास और कंचन की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

कीर्ति, कीर्ति, आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। कीर्ति, मैंने तुम्हें पा ही लिया। तुम नहीं जानती कीर्ति, तुम्हारे लिए मेरी आत्मा कितने सालों से भटक रही थी। तुम्हारे बगैर जिंदगी का एक एक पल ऐसे गुजरा है जैसे सदियां गुजर गई हो, हजारों साल बीत गए हो। लेकिन कीर्ति, अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता।

रेडियो SBS की जरिए खास कदम उस प्रोग्राम में पेश किए गए मुकेश और लता जी की आवाज में। सुनने वालों बाहर की ओर देखा जाए बारिश का मौसम है, यहाँ स्टूडियो के बाहर जबकि हम देखते हैं तो जोर जोर से बारिश हो रहा है। और पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार गाना जो आप सब सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की

ने लेके आए है बरसात। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म काला बाजार, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारा प्रोग्राम इस वक्त मॉरिशियस में दूषण जिगरी भी सुनते हैं और आज के प्रोग्राम में गाना सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम दिल ने फिर याद किया, मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

मॉरिशियस से खास तौर पर दुशन जिगरी, ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया मोहम्मद रफी की आवाज में, जो पेश की गई फिल्म का नाम दिल दे फिर याद किया, उसी फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में बस पेश की गई। आसरो भी थे, गाना आपने सुना और काफी पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई है। बारिश का मौसम है और खबर मिला है कि रोटरडम शहर के अंदर में भी जोर तोर से बारिश हो रहा है। सभी ना रोटरडम शहर के अंदर में प्रोग्राम सुनते हैं और फनाउट रेखन अख्तर रोटरडम सभी ना एक खास गाना मांग किया है। बारिश का मौसम में एक बड़ी ही खूबसूरत गाना आशा की आवाज में मांग किया है आज की प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है, जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

खूबसूरत गाना आशा भोसले और साथियों की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई आश्रो भी थे। गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना के खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 030-262-6611। एक गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में और आम्स्टरडम साउथोस की रहने वाली श्रीमती बेया भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और खबर किया है अभी तार पर कि गर्मा गर्म कॉफी के साथ प्रोग्राम सुनते हैं और आम्स्टरडम शहर के अंदर में भी खूब बारिश हो रहा है और मांग किया है तलत महमूद और लता जी की आवाज में खास गाना।

आराधे रहते हैं और सुन वालों बस प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। देन हाग शहर से तार अंदर आया है और तार किया है विनोद। विनोद जहां पर नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां पर हमारा प्रोग्राम इस वक्त जोर तोर से सुनते हैं और एक खास गाना सुनना चाहते हैं मुकेश जी की आवाज में, तो चले मिलकर सुनते हैं।

Den Haag शहर का रहने वाला विनोद, विनोद ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया। माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। आश्रोमित है विनोद, गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई आज की प्रोग्राम में, काफी सुनने वालों बस तार किया है स्टूडियो की ओर अपना अपना गाना मांग करने के लिए इस बारिश की मौसम में, भीजा भीजा सा मौसम में। रोटरडम शहर की रहने वाली शीला भी तार किया है और मोहम्मद रफी के आवाज में ये गाना सुनना चाहते हैं। शमी कपूर का फिल्म का नाम जानवर, मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

0: श्री मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म जानवर, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई 1965 का खास फिल्म का गीत अभी आपने सुना। और मांग करने वाली थे रोटरडम शहर की रहने वाली शीला, शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में इस भीजा भीजा सा मौसम में बस पेश की गई। आश्रो में थे शीला, गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अब की बार हम आपको ले चलते हैं डेन हाग शहर की ओर। डेन हाग शहर की रहने वाली सिंथिया सुक्कू की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम मैं तूसी तेरे आंगन की।
1: Op Radio SBS draaien we de hits waar jij van houdt.

उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गई लता जी की आवाज में अभी आपने सुना और ये खूबसूरत गाना आज के ये प्रोग्राम में मांग करने वाली थी देन हाग शहर की रहने वाली सिंथिया सुक्कू ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सिंथिया शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सुन वालों आपको खबर किया जा रहा है आने वाले वीकेंड में मिलन होगा और वो भी यूट्रेख्ट बारन में यानी कि ऑल टुगेदर फेस्टिवल फ्राइडे 5 यूनी और सैटरडे 6 यूनी ऑल टुगेदर फेस्टिवल स्टिक्टिंग संदेश बारन की जरिए बस पेश किया जा रहा है फॉर द 24th ईयर। तरह तरह की पोडियम प्रोग्राम रहेंगे और पोडियम प्रोग्राम के साथ यहां पर ढेर सा क्रांपियस रहेंगे जहां पर खाने पीने के लिए हर एक सामान भी रहेंगे और तरह तरह की सामान भी रहेंगे। मत भूलना फ्राइडा आने वाले वीकेंड फ्राइडा 5 यूनी और सैटरडे 6 यूनी मिलन होने वाली है बारन शहर में All Together Festival। हर एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है alltogetherfestival.nl। gratis एंट्री gratis पार्किंग है रॉयम पार्किंग प्लाट्स भी है। उसके साथ आपको खबर किया जा रहा है सैटरडे 6 यूनी शाम में 5 बजे से लेकर के और रात्रि में 7 बजे तक यहां पर रहेंगे म्यूजिक फॉर्मेशन एक्सप्रेस Met Lady Sanjana Muka en Black Boy Mr. Black. तो जरूर आइए हर एक को खबर कीजिए हर एक इंफॉर्मेशन भी आपको दिया जा रहा है रेडियो SBS का फेसबुक पर और रेडियो SBS का टिकटॉक पर। गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा और एक स्पेशल सॉन्ग है जो आज के ये प्रोग्राम में सपना ने मांग किया है और सपना स्पेशल गाना मांग किया है समवन के लिए बड़ी प्यार बड़ी मोहब्बत के साथ ये गाना लता जी की आवाज में बस सुनते ही रहना।

उत्तराखंड शहर की रहने वाली सपना, सपना खास गाना, स्पेशल गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है सोमवन के लिए, जरूर सुनते ही रहना लता जी की आवाज में फ्रॉम द मूवी आपकी खातिर।

एक बड़ी ही खूबसूरत प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में उत्तराखंड शहर की रहने वाली सपना सपना स्पेशल गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है सोमवन के लिए बस बड़ी प्यार बड़ी मोहब्बत के साथ ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम आपकी खातिर लता जी की आवाज में अभी आपने सुना। सुन वालों घड़ी की ओर देखा जाए 6 मिनट बाकी है सुबह 11 बजे में एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत पेश होगा और आखिरी सुन वालों की मांगी हुई गाना भी प्रोग्राम में पेश किया जाएगी। स्टूडियो की ओर तार किया है फोर ब्यूरक से सोनिया सोनिया ने तार किया है हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और एक गाना मांग किया है सुमन कल्याणपुर की आवाज में। आप सभी सुनने वालों को मालूम है कि सुमन कल्याणपुर की मृत्यु 31 मई 1989 की आयु में बस हो गई है। बीते हुए 31 मई 1989 की आयु में सुमन कल्याणपुर की मृत्यु हो गई है। तो सुमन कल्याणपुर की आवाज में फोर ब्यूरक की रहने वाली सोनिया ये गाना आज के ये प्रोग्राम में मांग किया है।

0: सुमन कल्याणपुर के आवास में ये गाना पेश की गए मन गाए वो तराना। फोर गोरख की रहने वाली सोनिया की मांगी हुई गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सोनिया आपके तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और सभी सुनने वालों जो प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, गाना मांग किया है, बस हमेशा इसी तरह से प्रोग्राम में हिस्सा लेते ही रहना, सभी को शुक्रिया धन्यवाद कहा जा रहा है। सुनने वालों कल बुधवार है, कल सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक फिर से पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जो रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। घड़ी की ओर देखा जाए ठीक 11 का वक्त है, हम आपको ले चलेंगे रिक्लाम न्यूज मौसमी समाचार और फरकीर्स इन्फॉर्मेशन की ओर, उसके बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Stichting Sandeers Baren organiseert ook dit jaar het leukste en gezelligste festival voor de 24ste keer. All Together Festival Milan in Pekingtuin Baren. 5 en 6 juni 2026. Vrijdag 5 juni vanaf 5 uur 's middags tot 11:30. Rock and Roll en Caribbean Night. Met als afsluiter de legendarische Molukse band Masada. Zaterdag 6 juni vanaf 12 uur tot 11:30. Jeugdfestival met gratis sminken en knutselen. Kula Skoro, Kasba. En vanaf 5 uur tot 7 uur 's avonds muziekformatie Express. Met Lady Sanjana, Muka en Mr. Black. DJ Binso. En we gaan de 24ste All Together Festival afsluiten met Smoorverliefd Doebaar Tribuutband. Volledige programma wordt gehost door Ryan Haripasar. Met heel veel kraampjes, eten en drinken. Voor meer info, Facebook All Together Festival Baren of alltogetherbaren.nl. Let op, gratis entree, gratis parkeren.
2: Voel de muziek. Beleef.

रेडियो SBS का खास प्रोग्राम से अभी आपने सुना ये खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। खासतौर पर सुतमेर शहर की रहने वाली शांता ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। हमारा प्रोग्राम इस वक्त भी सुनता है और वो भी एंटोफे शहर में हैंक महावीर। हैंक महावीर भी एंटोफे शहर के अंदर में हमारा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। भाई हैंक महावीर आपको भी शुभ दिन। इतवा शहर के अंदर में बारिश का मौसम है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। टेम्स ड्राइव 237 से रुद्रक से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। उदित नारायण एनालका प्रोग्राम में

और उदित नारायण की आवाज में ये गाना पेश किया गया है। आशिक फिल्म का नाम, एक फिल्म जो 2001 में रिलीज किया गया है। सुनने वालों, 5 मिनट बाकी है सरे 11 बजने में। रेडियो एस बी एस का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। दिल है तुम्हारा फिल्म का नाम, मोहब्बत दिल का सुकून। चले मिलकर सुनते हैं अलका, उदित नारायण एंड सानू जी की आवाज में।

गाना जो पेश की गए उदित नारायण अलका और कुमार सानू जी की आवाज में, ये गाना भी आपने सुना।

बारिश का मौसम है, भीजा भीजा सा मौसम, खूबसूरत नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चलिए आज के प्रोग्राम में फिल्म एक रिश्ता, उसी फिल्म का गाना मोहम्मद अजीज, अनुराधा पोटवाल, सरिका कपूर और साथियों की आवाज में पेश किया जा रहा है। और गाना का बोल है, एक राजा है और एक रानी है,

सरिका कपूर और साथियों की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम एक रिश्ता, उसी ये फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। वक्फोर 12 स्टूडियो टाइट हो चुका है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हर एक काम काज के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-6060। इसी तार की नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा हर एक इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं।

दामों में बस पेश किया जा रहा है। बारिश का मौसम तू चले अब की बार ये गाना नई आवाज में नई संगीत में।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चलिए गाना और प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में सोनू निगम और अलका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

शायर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले अलका एंड शान की आवाज में

आकाश में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आपकी सेवा में पेश किया जा

बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण एनएल की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, शादी से पहले, फिल्म का नाम, एक फिल्म जो 2006 में रिलीज किया गया है।

आवाज में फिल्म का नाम शादी से पहले फिल्म का नाम और उसी फिल्म से ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई तेरे बिना। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है वेबसाइट radio.sbs.nl। कुमार सानू एन सुनिधि चौहान प्रोग्राम में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है कुमार सानू और सुनिधि चौहान की आवाज में।

निधि चौहान की आवाज में ये गाना पेश की गई शब्द फिल्म का नाम और उसी फिल्म से ये गाना भी आपने सुना। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-66-11। कुणाल गांजावाला एंड सुनिधि चौहान शकलाका बूम बूम फिल्म का नाम।

कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना बसपुरगाम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। आज के प्रोग्राम में जरूर और जरूर सुनते ही रहना आशा उम्मीद है गाना आप सभी सुनेंगे और बेहद पसंद करेंगे। जावेद अली और साथियों की आवाज में ये गाना

रेडियो SBS के जरिए ये गाना पेश की गए जावेद अली और इंदु पांडे की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। शौर्य फिल्म का नाम अब की बार अदनान सामियन सुनिधि चौहान की आवाज में आज के प्रोग्राम में ये गाना पेश किया जाए।

सौरिया गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहे नाम रेडियो SBS का जो पेश किया जा रहा है संगीत भरी स्टेशन हॉलैंडी से उत्तराखंड शहर से। ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। शिखर फिल्म का नाम 2004 में ये फिल्म रिलीज किया गया है। एक गाना उसी फिल्म का उदित नारायण एंड अलका।

उदित नारायण और अलका की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आपकी बार अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम दिल।

ने पुकारा, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, मोबाइल फोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर की जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए दुनिया की कोने कोने तक ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है। द हार्ट ऑफ द बिलियंस, माइटी मुकेश।

आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में खूबसूरत पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले मुकेश के बाद किशोर कुमार द मैन विद ए फ्रीक्वेंट वॉइस किशोर कुमार के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है ये जो मोहब्बत है किशोर कुमार द नेम ऑफ द मूवी कटी पतंग 1970 का फिल्म 1987 का फिल्म है फिल्म कटी पतंग एक्टिंग सॉन्ग बाय लेट राजेश खन्ना।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, ये जो मोहब्बत है, रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

कि इसके आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश किए गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। गाना मोहम्मद रफी और हेमलता की आवाज में पेश किया जा रहा है।

मोहम्मद रफी और हेमलता की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए दिल करने लगा है प्यार तुम्हें। खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मन्ना डे प्रोग्राम में होगा और मन्ना डे की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

कुमार की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो बैठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। एक गाना फिर से आशा भोसले एंड किशोर कुमार की आवाज में पेश किया जा रहा है।

0: दिल मचल रहा है,
1: अभी समा नहीं है।
2: आशा भोसले और किशोर कुमार के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 03265 65 60। लता मंगेशकर प्रोग्राम में।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। लता के बाद हम आपको ले चलेंगे खास तौर पर मुकेश जी की ओर, और मुकेश की आवाज में, दमाइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम कन्हैया।

हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकीस के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था कन्हैया। चले किशोर कुमार की आवाज में, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुनो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशली क्रमलाल, दी उफा हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। विल टू रिएक्शन कर द टाइम सर्फ नाद वेबसाइट www.radiosbs.nl ऑफ बेल नाद स्टूडियो मेट 032-62-66-11। Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना शान और साधना सरगम की आवाज में कुछ ना कहो का टाइटल सॉन्ग, और अब आप सुनिए फिल्म रामलीला से अरिजीत सिंह की आवाज में लाल इश्क की मलहा।

कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे सोचा न था। बेहतरीन गाना आपने सुना संदेश सौंडलिया की आवाज़ में और साथ ही साथ साधना सरगम की आवाज़ में भी फिल्म सोचा न था से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म हैरी मेट सेजल से।

फिल्म निकाह से आपने सुना सलमा आगा की आवाज में, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए। खुशियां और गम सहती हैं, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है।

दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर मगर चुपके चुपके। ये बेहतरीन गाना आपने सुना कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म परदेस से। और अब आप सुनिए कूली नंबर वन से कुमार सानू और अलका याचिक की आवाज़ में, तुझे मिर्ची लगी तो मैं

शुभ मंगल सावधान से आपने सुना आयुष्मान खुराना की आवाज में मेरे लिए तुम काफी हो। और अब आप सुनिए परदेसिया, ये सच है प्यार, द रीमेक्स।

कितना प्यार करते हैं तुमको सनम, मेरे दिल से पूछो ना। आपने सुना फिल्म बनारस से हिमेश रेशमिया की आवाज में। और अब आप सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में अगला गाना प्रोग्राम रेडियो SBS का। फिल्म धूम 2 से आप सुनिए क्रेजी क्यारे।

मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है वाज आउट द फिल्म आशिकी एंड इज गेजोंग डोर उदित नारायण एंड अनुराधा पौडवाल। Het volgende liedje in het programma Gitong Kelleher is gezongen door Nawazuddin Siddiqui. Uit de film Bole Churiya komt Swaggy Churiya.

मुझे साजन के घर जाना है, इसका सॉन्ग दूर अलका याचनिक, सोनू निगम एंड जसपिंदर ने रूला एंक वाम आई द फिल्म लज्जा. Het volgende liedje in het programma Gieton Kleher via Radio SBS is gezongen door Sunidhi Chauhan en KK. Uit de film Bas Ik Pal komt Ashk Bhi Muskuraye.

सुन मेरे हम सफर, क्या तुझको इतनी सी भी है खबर इस खजानदार अखिल सचदेव एंकॉम आयो द फिल्म बद्री की दुल्हनिया आयो द फिल्म मैंने दिल तुझको दिया कौन खजानदार सोनू निगम ऐसे निधि चौहान मैंने दिल तुझको दिया इन प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS।

0: सभी को बेस पसंद है।
1: फिल्म सुल्तान से आपने सुना प्रोग्राम गीतों के लहर में विशाल ददलानी और बादशाह की आवाज में बेबी को बेस पसंद है। और अब आप सुनिए अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में फिल्म रईस से जालिमा।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे।

फिल्म बद्री की दुल्हनिया से आपने सुना तम्मा तम्मा अगेन, और अब आप सुनिए ढाकर फिल्म दंगल से रफ्तार और प्रीतम की आवाज में।

0: मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया पिया आवाज अवर द फिल्म मुझे कुछ कहना है। दिल्ली तेज खजोंदोर कुमार सानू एंड प्रीति अवर द फिल्म यादें कम तुत फोहत लीजिए फिया रेडियो SBS। जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले मिले दिल मिले।

थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। बेहतरीन गाना आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म मैंने दिल तुझको दिया है से। तो अब आप सुनिए फिल्म शुभ मंगल सावधान से अरिजीत सिंह की आवाज़ में राख।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.